0: खुम्मे नबी के हाथों पर है, खुम्मे नबी के हाथों पर है, वलियों का सरदार सज गई गदीर, देखो सज गई गदीर, सज गई
1: गदीर, देखो सज गई गदीर,
0: करके खुद ऐलान विलायत झूम उठे सरकार, सज गई गदीर, देखो सज गई गदीर, सज गई गदीर, दोनों है एक नूर के टुकड़े, दोनों तैयब ताहिर है, एक गदीरे खुम का मिंबर उस पे दो दो जाकिर है, आयत से मिलती जुलती है दोनों की गुफ्तार, सज गई गदीर, देख सज गई गदीर, सज गई गदीर, सज गई गदीर, देखो सज सुन के कजावों के मिंबर से पैगंबर की बातों को, सारे मुनाफिक मिलते रह गए अपने अपने हाथों को, उसको मनसब, उसको मनसब मिल गया जो था मनसब का हकदार, सज गई गदीर, देखो सज गई गदीर, सज गई गदीर, जलने वालों को मैदान खुम की धूप जलाती है, जिस्मों का तो जिक्र ही क्या है, रूह तलक थर्राती है, चलती है, चलती है कितनों के दिलों पर खुतबे की तलवार, सज गई गदीर, देखो सज गई गदीर, सज गई गदीर, गदीर, करके खुद ऐलान विलायत झूम उठे सरकार, सज गई गदीर, देखो सज गई गदीर, सज गई गदीर, देखो सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बार दीगर सलावत पढ़ी मुहम्मद व आलि मुहम्मद पर, या अली
2: या अली, नारे हैदरी
0: या अली। अगर साथे મરીને આપણે ફક્ત એટલો પ્રશ્ન કરીએ, પોતાથીને પોતાના દિલથીને એટલો જ સવાલ કરીએ કે આખરકાર વર્ષો સુધી ઈદે ગદીરને મનાવતા આવ્યા, ઈદે ગદીર મને શું સબક આપી રહી છે, ઈદે ગદીરમાં શું થયું એ બધાને ખબર છે, રસૂલે કરી

तो दो वर्जन है हमारे सामने, एक वो इस्लाम है जो कामिल भी है, तमाम भी है, खुदा की राज की रजा भी उसमें शामिल है, और ये वही है जो गदीर में कामिल हुआ है, इतमाम पे पहुंचा है, और अल्लाह की रजा भी उसमें शामिल है जिसमें विलायत अली इब्न अबी तालिब है। दुनिया के सामने चॉइस है, या तो आप वो इस्लाम लें जो इम्परफेक्ट है, इनकम्प्लीट है, नॉट ऑथोराइज्ड।

दुनिया के सामने चॉइस है, या तो आप वो इस्लाम लें जो इम्परफेक्ट है, इनकम्प्लीट है, नॉट ऑथराइज्ड बाय अल्लाह, वो जाली चीजें भी बिकती है ना बाजार में, एक रियल होती है एक नकली होती है, तो एक वो वर्जन है, लेकिन दूसरा वो है कि जो परफेक्ट भी है, कंप्लीट भी है, जेन्युइन और अप्रूव भी है, और ये वही है जो विलायत अली के साथ है। सलावात पढ़ने के बाद खुदावंद आलम की बारगाह से दुआ है, खुदावंद इसके लिए बार कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी तौफीकात में इजाफा फरमा। खुदावंद तेरा शुक्र है कि हम विलायत अली पर कायम हैं, आखिरी ज़िंदगी के आखिरी मरहले तक हमें उसी पर कायम रखना। खुदावंद इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। लेट अस ऑल एंड विद दिस स्टेटमेंट ऑफ ग्रीटिंग फॉर टुडे व्हिच इज़ एक्चुअली थैंकिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला। الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام.

रोशनी आ गई गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को उजले मलबूस को मत कफन मान दूर मैं चला हूँ अली से मुलाकात को जिसकी थी।